गोविंद नाम मत बीसरे। ए बैन उस गोविंद दा नाम ना विसरे, क्योंकि जे नाम विसर गया ता फिर की हाल होवेगा, जुड़ना विच भटकना पवेगा, दुखी होवांगे इंसान इस दुनिया विच जन्म।

अपने लड़कियां नाल प्यार करता है, सोने मकान बनाने वास्ते यतन करता है। ऐसे इंसान भी ने जिहड़े इन्हां चीजां नाल प्यार करते, पर उन्हां नूं अखीर मिलदा की है? आप जी बयान करते नहीं, ते जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे नाल प्रीत करे उन्हूं की मिलदा है? भगत त्रिलोचन जी अपने शब्द विच बयान करते ने, आखिर नतीजा यह कढ़िया, दुनिया नाल प्रीत करो तां दुख मिलदे ने, उस गोबिंद दे नाम दे नाल प्रीत करो तां उहदे चरणां विच जगह मिलदी है। इस वास्ते कहा हरि भाई, उस गोबिंद दा नाम

अंत काल जो लक्ष्मी सिमर लक्ष्मी के माया जेड़ा इंसान सारी उम्र यही सोचता रवे कि वध तू वध पैसे कमा लो भावें उहदे वास्ते पाप करने पे भावें ठगी करनी पवे भावें डाका मारना पवे पर पैसे जरूर कट्ठे कर अंत वेला आंदा नाम नहीं जपया मरण लगा है ते तां वी चिंता करदा है कि दुनिया तू एवें तुर चले आ मन मुताबक कमाया भी नहीं कमाई अंत वेले माया वाल ध्यान मौत हो गई तां भगत जी बयान करदे ने उस इंसान नू अगला जन्म कदा

अंत काल जो लड़के सिमरे जिड़ा इंसान सारी उम्र तिया पुत्रा वाली ध्यान रखे नाम ना जपे अंत वेले भी ओदा ध्यान लड़किया वाल है नाम नहीं जपया नाम वाल ध्यान नहीं जे लड़के होए आग्या कारनी तां दुखी जे लड़का कोई नहीं होया तां दुखी ए नहीं कहंदा कि परमेश्वर जे तू दिता तेरी खुशी जे लड़का नहीं दिता तां भी तेरी खुशी उदा नाम नहीं जपया अंत वेले भी लड़के दा ध्यान मौत हो गई तां

नाम ना जपे मौत हो जाए ता ओदा अगला जन्म सूकर जोन अगला जन्म ओनू सूर दा मिल जाए। आपने देखा होवेगा के सूर दे सत सत अठ अठ बच्चे होंदे ने। इस तरह ओ इंसान सूर दी जुने पै के अपने बच्चियां वाली तृष्णा पूरी करता है। भगत जी कहंदे ने जिहड़ा अंत वेले लड़कियां वल ध्यान रखे

कोई मकान भी ना बना सके, सिमरन नहीं कीता, मरन लगे हां भी सोने मकाना वाले ध्यान, इसे चिंता विच ही मर गए।

आओ तो जय प्रेत जोन ता अगला जन्म ओनू प्रेत दा मिलदा है भूत प्रेत बनदा है अते अपनी तृष्णा पूरी करदा है। भगत जी कहंदे ने अंत वेले मंदिर मकान

सतगुरु जी ने यह कहा कि दुनी चंद तेरा पिता जोना विच भटक रहा है, फिर तिना दिना दा भुख है, नाले ओ रोटी नहीं खांदा, ओ ता मास खांदा है। तेरा पिता बगियाड़ दी जोन विच है। ए गल सुनी जिन्ने लोग बैठे सन सारिआं नूं रोटी खानी भुल गई, सारिआं दी निगाह धन गुरु नानक साहब दे चेहरे ते गड्डी गई। दुनी चंद भी हैरान हो गया, हाथ जोड़ के कहन लगा पातशाह जे मेरा पिता मुक्ति नूं प्राप्त नहीं होया और बगियाड़ दी जून विच है, मैं कई सालां तों हजारां रुपए खर्च करके इस राज भंडारे करना वा, ते की मेरा ए दान पुन मेरा ए भंडारा करना सब व्यर्थ चला गया। साहब जी कहन लगे नहीं तू नहीं चाहते, तेरे दान पुन दी सदका ही अकाल पुरख ने सानू तेरे कोल भेजिया तेरे पिता नु मुक्त करन वास्ते। इस तरह कर, ए जिहड़ा प्रशादा तू साडे सामने रखे है इनू चुक लै, लाहौर दे दक्खण वाले पासे 3 मील दी विथ ते इक झाड़ी है, उस झाड़ी दे कोल तेरा पिता बगियाड़ दी जून विच तिन्ना दिना दा भुखा लम्मा पे है। डरी ना, कोल जाके आवाज मारी, वो सिर चुकेगा, मानो तेनू बुला रहा होवेगा, ते ए प्रशादा ओदे अगे रख दे। दुनी चंद ने प्रशादा टकिया, उस प्रशादे ते तन गुरु नानक साहब की मेहर की निगाह पै चुकी सी। प्रशादा लैके दुनी चंद शहर के बाहर तुर पे है, ते भगत त्रिलोचन जी कहिंदे ने ऐ भाई जे जूना विच नहीं भटकना ते आ फिर परमेश्वर

पुत्र पूछन लगा, पिताजी मैं ता बड़ा दान पुन कीता, बड़े भंडारे कीते, पर तुसी ए बग्याड़ दी जोन किस तरह लई? ता दुनी चंदा पिता कहन लगा, बेटा मैं बीमार सा, मंजी ते पिया, मेरा अंत वेला आया, उधरों किसे दे गुआंढी दे कर मास रिजा मैनू खुशबू आई, मेरा चित कीता जे थोड़ा जिहा मास मिल जावे मेरा मुंह करारा हो जाए, क्योंकि बीमार सां ते मुंह दा स्वाद ठीक नहीं सी। मास दी खुशबू आई ता चित कीता कि मैं मास खावां, उधर मेरी मौत हो गई ते वाशना दा बदा मैं बग्याड़ दी जूने पै गया। जिस तरह की भगत त्रिलोचन जी बयान करते ने, ऐ भाई जेड़ा इंसान जो सोचता मरदा अंत वेले ओहो ये जन्म ओनू अगे प्राप्त हुंदा है। ऐ बेटा मरन वेले मेरी इच्छा मास खाण दी सी, परमेश्वर दे नाम वल ध्यान नहीं सी, इस करके मैं बग्याड़ दी जूने पिया ते बड़ा दुख भोग गया, पर भाग चंगे ने कि तेरे घर धन गुरु नानक साहब आए ने, उन्हां दे सदका हुण मैं तां मुक्ति नूं प्राप्त हो गया। पर बेटा हुण तू जा, तू भी गुरु नानक साहब दे चरणां ते डिग पै ताकि तेरा भी जन्म मरण सौर जावे। इन्नी गल कही दुनी चंद दा पिता सचखंड नूं चला गया। दुनी चंद हुण खुशी खुशी वापस

समझदी मैं बड़ी सोहनी है, मैं बड़ी तेज भजनी है, मैनू कौन फड़ सकदा है। इसे हंकार दे विच ही वो मौत नूं भुल जांदी है।

सब जग बाधो काल को सारा जग मौत दे वस है सारिया नू मौत आनी है पर कदू आनी किसे नू पता नहीं मरना जरूर है मौत तू कदी कोई बचिया नहीं पर समझ नहीं आती इंसान फिर भी क्यों हंकार करता है पता भी है मैं मर जाना मेरे नाल कुछ नहीं जाना पर इंसान फिर भी पाप करता है फिर भी नाम नहीं जपदा कहता ए भी मेरा ए भी मेरा पर कुछ भी इसका नहीं प्यार ऐसा ही है कहते सारे ने कि मेरा बड़ा प्यार है पर धन गुरु नानक साहब कहते ने को मरे ना मोया नाले जिहड़ा इंसान मर जाता है ओदे नाल मरदा कोई नहीं एक औरत आदमी का पुत्र मर गया बड़े रो मां भी कवे बेटा तू ना मरदा मैं मर जाती पिता भी कवे तू क्यों मर गया तेरी जगह मैं मर जाता मेरी उम्र तेनू लग जाती इन्हों दोनों का यह रोना देख के कोई महापुरुष उस पासे आ निकले देखिया बड़े लोग इकट्ठे रो रहे ने लड़के दे माता पिता ज्यादा रो रहे ने दुख तो होंदा है दुख है भी पुत्र मरे पर रो रहे सन कि बेटा तू ना मरदा असी मर जांदे इन्हां दोनों दा रोना देख के महापुरुष कहन लगे तुसी दोनों अपने पुत्र नाल प्यार कर दे कहन लगे हां महापुरुष कहन लगे तुसी ए चाहते हो कि असी मर जाइए साडा पुत्र जिंदा हो जाए कहन लगे हां महापुरुष कहन लगे फिर इस तरह करो मेरे कोल एक जहर का प्याला है जिन्हों पुत्र नाल ज्यादा प्यार है वह पी लवे वह मर जाएगा उसकी जगह उसका पुत्र जिंदा हो जाएगा जदों जहर का प्याला देखिया ते ना फिर मां का दिल करी ते ना पिता का मोह तो है पर मरना बड़ा औखा है तो गुरु साहब जी ते इथों तक कहिंदे ने भाई ऐसो यो संसार वेखना रहन ना को पई है रे कि जिहड़ा तू संसार देखदा है बड़ा सोहना लगदा है बड़े सुख ने इस संसार दे विच पर इस संसार से हमेशा कोई रहिंदा नहीं किसी ने अज मरना है किसी ने कल मरना है इस करके भाई उस पर

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का वो प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उचारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब तक ही जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहंदे हन साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मुतलक कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू ए पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ये आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे तो कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो, जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर दशमेश पिता दे चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल के सवालों

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी, सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके। ते जेड़ा सतगुरु गरीब नूं आए सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउण वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सतसंग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहिंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब।

गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिदी ओ मुख पवित्र होना चाहिदा भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर देन। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैण उसनू मां भैण दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू अज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैण जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैण नू मां भैण ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू अज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू अज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको जिहा प्यार देवे।

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिन तक बनी रहनी रोजाना उस नु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछ। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूरने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी का सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशा खेडनिया, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे ओ जवान गिनिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान होएगा।

कीर्तन तो बाद कथा होंदी सी शाम नूं। अज भी पंजाब दी धरती दे उपर कीर्तन तो उपरंत कथा होंदी है, कथा भी सुननी। जेड़े इन्हां नियमां दे धारनी होणगे ओह सिख अमरापुरी दे अंदर निवास करनगे, जिथे एक बार जाके गुरु का सिख मुक्त हो जांदा है। सचखंड जिसका नाम है उथे मैं दर्शन देंगा गुरु के सिख नूं, जिथे मेरा निवास उथे गुरु के सिख दा।

गुरु के सिखां कोल धन अपार है ते फिर जिस कोल धन हुंदा है उसकी कीर्ति हुंदी है जस हुंदा है। कीर्ति नूं सुन के गुरु का सिख अहंकार विच ना आवे। सुख गुरु ने दिता है सुख नूं वेख के फुलिया ना फिरे औगण ना करन लग जे। धन कीर्त सुख राज बढ़ाई युवती जित सुत विद्या बहु भाई। दूजी है विद्या विद्या पढ़ के विचारवान वड्डा हो जांदा है। किसे अहुदे ते पहुंच के गुरु ना भुल जावे। किसे अहुदे ते चंगे ते पहुंच के गुरु की सिखी ना भुल जावे। युवती सुत विद्या बहु भाई ए सब दात गुरु की जाने। ए सारियां दियां सारियां गुरु कियां दातां जाने। दाता जान के मन अंदर रंचक मात्र भी अभिमान ना आवे ना अभिमान करे ना अहंकार करे। गरीब नवाज

माता माता नी नीता नीता सा सदा नी दावा गा मन कुजर मन कुजर मन कुजर पिल गुरु।

सतनाम। सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक देव जीओ महाराज। नमस्कार गुरुदेव को।

गुरु नानक पद पंकज वंदन। गुरु नानक पद पंकज वंदन। सिमरो अंगद दुख नकंदन। अमरदास।

0: साध की महिमा भेद न जाना, जेता सुने तेता वख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही पूर। साध की शोभा का नहीं आना, साध की शोभा सदा। सतगुरु जुगो जुग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत, शब्द अवतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तपस्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई, अपनी हाजरियां लगवाउण दे लई, सतसंगत हरी जस कीर्तन दा लाभ उठाउण दे लई आए हो, बड़ भागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनियां बना रहे हो, सचमुच इन्हां घड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रहियां हन। साहबजादे बाबा जी सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जिया दे 300 साले दिहाड़े संगतां मना रहियां हन। ये कितने दिहाड़े कट्ठे होए हन। ब्रह्म ज्ञानी महापुरश बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, बड़ भागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत, इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहिगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हन, परंतु सात संगत उस दी कुदरत कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें एक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज ना उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाना, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन किया, बड़ी महिमा वर्णन की है। आओ ऐसे ही महापुरशां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। वज वज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो,

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करदे हन। असी लोग ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच भरम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेकां तरां दे दुखां सुखां दे विच फसे होए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए होए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेडे परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए और सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिवजी

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हैं किसे जंगल दे रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूल चक चक के मत्थे नाल ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती ते नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हां नूं लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पुछदी है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो? भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषा ने तपस्या कीती है। बोलो, यह धरती का कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती की यह समर्था है कि पवित्रता बख्श सकती है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषों का जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साडे लोगों वास्ते। भावें संसारक तौर ते महापुरुषां दे जीवन नूं कोई सास उस दा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असीं अपनी बोली दे विच ओ विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सास संगत जिन्हां दे नाम तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान साध संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह साध संगत संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते साध संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं साध संगत सुनाउंदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी साध संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओ डेरे दे विच होके जांदे, मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी विरध अवस्था विच पहुंचे हुए सन, परंतु एक दिन उन्हां ने यह कहना कीता कि भाई गुरमुख सिंह, अज साडे कोल टाइम नहीं है, अज असीं जल्दी जाना है, साडे कोल बड़ा थोड़ा वक्त है, असीं जल्दी जाना है, जल पानी छकण दा चाह पानी छकण दा सानू ना मजबूर ना करो, साडे कोल टाइम नहीं है, गड्डी दे विच बैठे बैठे ही बस जो कोई गलबात करनी है कर लो। ते गड्डी दे विच बैठे बैठे भाई वीर सिंह जी उन्होंने कहना कीता, भाई गुरमुख सिंह जी, साडे कोल टाइम तो नहीं है, परंतु असीं चाहुंदे हां कि असीं बाबा हरदित सिंह उन्हां दे इस ते असीं नमस्कार कर लईए, एक बारी गुरु साहिब नूं मत्था टेक लईए। संत गुरमुख सिंह जी हथ जोड़ के कहिंदे ने, जिवें आप जी दी मर्जी होवे। भाई वीर सिंह जी गड्डी तों उतरे, महापुरशां दे पवित्र स्थान ते नमस्कार करन लगे, मत्था टेकन लगे। असीं लोक मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, भाई हुण मत्था टेकिया, सारिआं ने जल्दी नाल मत्था टेक के खड़े हो गए, ते बहुत इन्हे तो मत्था लाया भी नहीं, जे किसी ने लाया तो थोड़ा जा मत्था ला के बस चुक लिया। भाई वीर सिंह जी ने मस्तक लाया, मत्था लाया, सारे उठ के खड़े हो गए, परंतु भाई वीर सिंह उन्होंने मस्तक नहीं चुकया। 5 मिनट निकल गए, सारे देख रहे हैं, 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गए, 25 मिनट निकल गए। बोलो इतने मिनट नमस्कार, इन्नी लंबी नमस्कार, इतना वड्डा मत्था टेकना, नमस्कार करनी, ते साध संगत संत गुरमुख सिंह ने कहंदे, असीं सोचदे हां भई 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह नूं कि भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए। बोलो सतनाम, टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा इक वारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपकी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया। बोलो सतनाम, संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहिंदे पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले दा तुसी कहिंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असीं बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, नाले तुसी मत्था टेकदे नमस्कार करदे 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे हो साडे कोल टाइम नहीं है। बोलो सतनाम। भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर का भजन होया है, असी तो अपने आप नू नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी। बोलो सतनाम, जिमें बैटरी डाउन हो जाती है कम करदी करदी, फिर उस नू चार्ज करन दी लोड़ पैंदी है। कहंदे ऐसे तरह असी तो मत्था टेक के असी अपने आप नू चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो साध संग जिथे वाहिगुरु दा भजन वाहिगुरु दा सिमन, किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे, सो शिव जी भगवान कहंदे हे पार्वती इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असीं एवें नहीं कहंदे, इथे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तां है नहीं, जिथे असीं मत्था टेकदे हो इह धूड़ चक के मत्थे नाल ला रहे हो। कहंदे इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, किसे ने परमात्मा दी याद विच लीन हो के ओदा भजन कीता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इसे करके गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे फिर पढ़ो,

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दा जीवन बड़ा अद्भुत है, सतसंगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हां दी शरण दे विच इतनी तपस्या कीती, इतनी भगती कीती जो अखरां द्वारा वर्णन नहीं कीती जा सकती। बोलो
1: सतनाम।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हों के पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ए सी गुरमुख की कठाली विच ढा लिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे सन। गुरु नानक साहिब जाके साधुआं कोल बैठा करदे, भाई फकीरां कोल बैठदे। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते सास संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर सास सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी काम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तो इत्थे खेतों में कम करता रहिंदा है, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया, वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकते, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आना है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह, कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है। जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनू पंजां प्यारे ने नाम दी दात दत्ती है, ते नाले कहा जो तेनू ये गुरमंत्र दत्ता है, मूल मंत्र दत्ता है, नाम दत्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इनू भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डना। ये नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजों कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन, लत्तां भी साध संग कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संग, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुण पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती की महापुरशो कृपा करो इस बालक नू अपनी चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इस बालक नू अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका ए तां बालकी है भाई, ए तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालके च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनू तो कोई परवाह नहीं, तुहानू दुनिया की परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तो बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ए बड़िया सास लम्मिया विचारा हन। सास बाबा जस्सा सिंह ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों बई तैयार है? फिर ए लाइन बड़ी औखी है, ये फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहना कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशा ने कहना कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ये बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज नांगल नहीं हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिन्ने त्याग दतिया। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज

के सबे घट राम बोले रब दे प्यारे जिना ने शब्द दी कमाई की थी ओ फिर जिधर वेखदे हन उन्हां नूं परमेश्वर दी जोत।

उच्चारण करो श्री वाहेगुरु, पर ऐसी दृष्टि कि वो जिधर वेखते हैं जरे जरे विच परमेश्वर का नाम नजर, परमेश्वर की जोत नजर आवे, ये शब्द की कमाई तो होती है। कबीर जी कहते हैं, अल्लो अलख न जाई लख्या, गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब नरंजन दीता। जदों मैनू पूर्ण गुरु ने नाम रूपी गुड़ दे दिता, ते उस नाम की कमाई की थी, ते फिर हुण कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा। एक वेरा दा जिक्र है भगत नामदेव जी नू, हंकारी पंडिया ने आख्या, ऐ नामदेव तू बड़ा नास्तिक है, क्योंकि अगे ठाकरा नूं इशनान कराउंदा सैं, फुल्लां दी माला चढ़ाउंदा सैं, दुध दा भोग लवाउंदा सैं, हुण तू कुछ

मैं जिधर वेखदा हां बीठन ही ईश्वर ही ईश्वर नजर आउंदा है ते जिथे वेखदा ईश्वर अपने आनंद विच मगन होया है। मैनू कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा तां पंडिया ने आख्या कदी दुध दा ही भोग लवा लिया कर तां भगत नाम दे।

ते बाबा संगत विचों बिछड़ गया है। संगत अगे लंघ गई ते बाबा पिछे रह गया है। रस्ते दे विच खलोता है, पांड चुकी नहीं जांदी, तुरिया नहीं जांदा, ते ऐ मना हुण की करां। जंगल वियावान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावांगा। उच्ची देनी आवाज मारी, भी है कोई हो जाया जेड़ा मेरा पार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा। अज जदों बाबे ने उच्ची आवाज मारी ना, बाबा की तक रहा है, ओ सामने झाड़ियां वलों एक नौजवान गोल पगड़ी लंबा चोला, ये नौजवान आया, बाबा किथे जाना है? भई मैं सतगुरां दे दर्शन करन चलिया ते संगत विचों बिछड़ गया, पार मेरे कोलों चुकिया नहीं जांदा, लिया बाबा तेरी पांड मैं चुक लैंदा। बाबे दी पांड सिर ते चुकी ते बाबे दा हाथ अपने मोढ़े ते रख लिया।

की पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारिया श्लोकों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होगा, मेरा काम इन्ना है। ओए भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आ के अरदासां करदा सी।

एक ना एक दिन चला जाना है। जात माल रिश्तेदारां वाल दोस्तां मित्रां वाल पिंड नगर वाल किन्ने चले गए ने ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा। फरीदा किथे तेंडे मापे भी किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी वो तेरे तो लद गए ने चले गए ने। इसी तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह कहो नानक सुनरे मना दुर्लभ मानुख दे। जे सुख चाहता है ना ते सुबह शाम संगत विच बैठ के स्वास सफले करया कर।